0: हंगार अंगार दो मिंदुर कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मिंदमो पार गड़ तेरी हूँ
1: हंगार
2: हम एकने दिवे ही राज्य के आडू
3: मिहारुगटिंग मिंदुर बार

0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुल कोरी इकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होगेरे मेंदमो बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हमें कनी दिवे राज्य चढ़ूं